की लगे भूख, भुख है खै चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की दिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सा मिल कै आख न पाई, वडन होवै काट न जाई। ना ओह मरे न होवै सोग, दिंदा रहे न चुकै भोग, गुणे हो हुर नाही कोई, ना को हुआ ना को होय, जिवड़े आप तिवड़ तेरी दात, जिंदन करके कीती रात, कसम बिसारें ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरमा सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। गुरमत मेरे मीत गुर दे मोको, राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड पाग वडेरे, जन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सरसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जी परया, सैल पत्थर में जन तो पाए, ता का रिज का गे कर दरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बंता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर जिक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उडै उडा वैसे कुसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दास अष्ट सिदान, ठाकुर कर चल दरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गमा गमा पारा, सब ते आवे तुर जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याओ संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेविक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिना वरना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेव है जो सेव है तुर जी, जन नानक दिन कुर्बाना, हर ते आवे तुर जी, सी जन जुग में सुखवासी, से मुकत पहे जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी, जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जिन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरी भगत सलाहम तुर जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनक करे हर पूजा जी, तव तप हैं जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बस सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख परम पर करता जी, तुर जेवड़ अवर न कोई,
ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਨੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਡਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੇ ਮਾਹੀ, ਤਜਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰਣ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

रक्षा राख लियो मोहे राखनहारी, सहज संत सहाय प्यारी, दीन बंध दुष्ट निके खंता, तुमहु प्रिय चतुर्दश कंता। काल पय ब्रह्मा भवद्रा, काल पय शिव जीव भद्रा, काल पय अगर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राय ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन पुजायो, आदन ते के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतन को पल मोबद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बरे की पीर पछाणत, चिट्टी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जवद कर करा करतारा, प्रजा तरतव दे अपारा, अरे आप अपनी बूझ उचारी, तुम सभी तेरा ते निराल, आद नील नाद संभ, तांग पेदना जान। महादेव

दुष्ट जिते उठवा तुद पाता, सकल मलेश करूरन काता। जे अस्तुजतव सरणि परे, तनके दुष्ट दुख तव मरे। पुरख जवन पग परे, तिहारे तनके तुम संकट सब उतारे।

कई कोट पन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखत्र कई कोट देवदान इंद्र सरछत्र सब समरी अपने सुतारे नानक जिस जिस भावे तिस तिसन तारे कई कोट राजस तम सतक कई कोट वेद प्राण सिमत रसायत कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट के चरजी पै कई कोट गिरी मीर स्वर्ण थी पै कई कोट जख किन पचात कई कोट भूत प्रे सुकर मृगान सब ते नेरा सब ते दूर नानका पर त्रया भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जी पै मरै कई कोट पोजो नि फिरै कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थपाए कई कोट किए धनवंत कई कोट मैं चिंत जह जय पाणा तै ते राखे नानक सब केश प्रभ के हाथे कई कोट पै बैरागे राम नाम संत नवरागे कई कोट प्रभ को खोजनते आत्मे पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यार तिन को मिलियो प्रभ बिना कई कोट मांगे सत्संग पा ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को हुए आप सुप्रसाना ते जन सदा धन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई ज्योत किनो विस्तार कई बार पसरियो फसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किने बोपान प्रभते हुए प्रमाय समाज ताका अंत न जाने कोई आपे आप नान प्रसोय कई कोट पाब्रह्म के दातन हुवते आत्म प्रगाढ़ कई कोट तद के बेते स्थान हरे को नित्रै कई कोट नाम पीवै अमर भय सा सदे जीवै कई कोट नाम कुन गावे आत्म रासु सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाई कोय नानक तिस बलहारण जल थल महिर सोय अठ पदे करण करावन करणे जो ज्योत पावे सोई होग किरमे ताप उतापन हारा अंतनी कृपारा पारा हुक्मे धार अतर हापे हुक्मे उपजय हुक्म सुमावे हुक्मे उचनीत पिहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कार कार देखे अपनी वड्याय नान सब रिया समाय प्रभावे मानुख गत पाए प्रभ भावै तम पात्र तरावै प्रभ भावै बिरसा ते राखे प्रभावे तां हर गुण भाखै प्रभ भावै तम पथ तुधारे आप करै आपन बिचारे दोहां सिरां का आप स्वामी खिलै बिकसे अंतर जामी जो

सर्व तैसिद विद्या तप जो प्रवत्यान ज्ञान श्रेठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमर प्रगास सबके मर सर्व ते उदान।

तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले।

नानक घर के गोले, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनों, सेवक परिवार छतवाल परिवार वालों, स्वर्गवासी बीबी उपदेश कौर छतवाल जो पिछले दिन अकाल चलाना कर गए सन, तिना दे अंतिम संस्कार तो उपरंत परिवार वालों कैनेडा दे विच जिहड़े उन्हां दे नेड़ता रखण वाले ने उन्हां दी सहूलत नूं मुख रखदे परिवार वालों गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा श्री विखे श्री सुखमणी साहब जी की पावन बाणी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। अकाल पुरख वाहगुरु जी की अपार कृपा बख्शिश रहमत हुई निर्विघनता सहित संपूर्णता उपरंत विछड़ी हुई रूह की कल्याणता वास्ते ते परिवार के भाणा मनण के बल वास्ते आपां सारिआं ने रल मिल के धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरण कमलों पास अरदास बेनती की है। सतगुरु कृपा करन विछड़ी हुई रूह चरणा च निवास बख्शिश करन, परिवार को सतगुरु भाणा मनण का बल बख्शिश करन। परिवार वालों आईया हुई समूह संगत का तय दिल तो धन्यवाद है जिन्हां ने दूरों नेड़ों चल के इस दुख की घड़ी विच पहुँच के परिवार नाल हमदर्दी का प्रगटावा करदे आ, परिवार की मोरल सपोर्ट की है। परिवार आप सभनां दा धन्नवादी है। आईया हुई समूह संगत वास्ते सेवक परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए हैं। आप समूह संगत के चरणों में सुनिमर बेनती है, आप जी ने गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का। सत्कारयोग भाई हरजिंदर सिंह जी बीड साहब वाले आप जी ने गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करवाएंगे। अदब सहित सरवण करने की कृपालता करो जी। वाहेगुरु।

रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास वाहिगुरु जीओ फरीदा ए तन भौंकणा नित

जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहे समर्थ के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत, साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे बहुत ही सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब गुरदेव दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन दे नाल मेरे तो पहला सांझ बना रहे सी, तो आओ समा है लड़ीवार चल रही शेख फरीद साहब जी दे पावन श्लोकां दी विचार दा, तो विचारां नूं प्रारंभण तो पहला फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शेख फरीद साहब अपने तन दे बारे एक शब्द वरते ने, भौंका। तो भौंका जिहड़ा शब्द है उहदे बारे वरत्या जाता है जिहड़ा बहुत बोलदा होवे, तो जिन्हों सुनन की आदत ना होवे पर अपने सुभाअ दे मुताबक कंटिन्यू जिहड़ा बोली जा रहा है उहदे लई अमूमन ये शब्द जिहड़ा है वह वरत्या जाता है। तो बाबा फरीद साहब ने आख्या भी हे फरीद, मेरा जिहड़ा ये तन है ना, जिहड़ा मेरा शरीर है, ये भौंका बन चुका है। फरीदा ये तन भौंकना, जिवें कोई कुत्ता निरंतर भौंकदा है। वैसे इदां दे शब्द सतगुरु की बाणी दे विच बहुत वार आए ने, जिवें आपां बाणी विचों एक वाक पढ़ते हाँ, कल होई कुत्ते मोही। गुरुदेव ने आख्या रब तो विछड़ी हुई जिन्नी ये सृष्टि है संसार है, गुरु दी विचार तो टुट के ये संसार कुत्ते दे मूंह वाला हो गया है। हुण शब्द कठोर ने थोड़े, पर कोई गल नहीं, जे गुरु झिड़के तां मीठा लागे, गुरु दी झिड़क मिठी करके ही मननी चाहीदी है। तो सतगुरु गुरु नानक साहब दा ये बचन है, वो कहिंदे कल होई, कल दा अर्थ कलयुग भी हुंदा, आख्या कलयुग दे प्रभाव करके। कलयुग दा अर्थ की है, माड़ियां विचारां दे प्रभाव करके। कलयुग समा नहीं हुंदा, बल्कि कलयुग की है बंदे दे अंदर दी सिचुएशन हालात, उन्हों कलयुग क्या है। तो कलयुग हुंदा है जिथे बंदे दे जीवन विच कूड़ वरतदा है, झूठ वरतदा है, बंदा झूठ दा ही सहारा लैंदा है। तो सतगुरु ने कहा है जिन्नी लुकाई है इन्हां दे अंदर कलयुग वरत रहा है, तो कलयुग दे वरतन करके ये लुकाई कुत्ते दे मूंह वाली हो गई है। कल होई कुत्ते मुही, खाज हुआ मुरदार। बाबा जी कहन लगे मुरदार जिवें कुत्ता हड़क जावे ते ओ मुरदिया नूं खाण लग पैंदा है, हर एक नूं वड्डेगा, मालक नूं भी वड्डेगा, मांस खावेगा मुरदा खावेगा। तो बाबा जी कहन लगे कल होई कुत्ते मुही, खाज हुआ मुरदार। खाज दा अर्थ हुंदा खाणा, तो इन्हां दा जिहड़ा खाणा है वह मुरदा हो गया है। खाणा मुरदा की हुंदा, जिवें सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने भी जिहड़ा मनुख पराया हक खांदा है वह की है, मुरदार खा रहा है। इनू बाणी ने की आख्या, मुरदा खाना। तो अमूमन संसार ये गल कहिंदा है भी असी वैज हाँ कि नॉन वैज हाँ। बाबा जी बाणी विच कहिंदे ने जिन्ने गुरु की
विचार दा त्याग कर दिता। जिहड़ा पराया हक खांदा है वह मुरदा खा रहा है। सतगुरु ने बाणी विच कहा हिंदू गां नहीं खांदा, मुसलमान सूर नहीं खांदा, पर जे वह पराया हक खा लैंदा समझो उन्हें गां भी खा ली तो उन्हें सूर भी खा लिया।

जिमनी सभंग प्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सभंग प्रसाद एक मन पुरख त्याहे बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरम लर दे बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्द निवारण शब्द सराय गावे गंभीर तीर महासागर जोगी जंगम त्याम तरय गावेंद्र आद भगत प्रहलाद को आत्म रस जिन जानियो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो दर्शन दे जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा ए बनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम करे अपने चेरे अपने शरण राह प्रभ दाते गुर प्रसाद कन बिरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसे मेर चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास दर्शन प्यासी दिनस रात चितवन अंदर नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत सो कहो टल गुरु सेविया अहनेस सहज सुभाहे दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सेवत कसम दी मोरे अरसों कुरसों जटिया तोद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह हुंदे शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसा सतनाम वाहिगुरु साहब जी सलोक महला तीजा विणना में सब भरम दे नित जग तोटा संसार मन मोह कर्म कमावण हमें अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार विणना में सब परम दे नित जग तोटा सहसार मन मोह कर्म कमावण हमें अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा
सज जागे सज सोवे गुरमुख अंदन उस्तत होवे मन मोह पर में सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जागे समय सुभाए नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी से हर नाम ते आवे जो हर रत्या हर एक ते आवे एक इको हर सत्या हर एको वरते एक इको तुपत्या जो हर नाम ते आवे तेन डर सट कथिया गुरमती देवे आप गुरमुख हर जपिया जो हर नाम ते आवे तेन डर सट कथिया गुरमती देवे आप गुरमुख हर जपिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा विणनावे सब परम दे नित जग तोटा संसार मनमोह कर्म कमावणे होमे अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार वाहिगुरु साहिब जी हो तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे नमक नमक तुम ही प्रतपालो मुबारक तुम रे तारे जेवा एक कौन गुण कही बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न के नहीं लिये राव कोड़ पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलमत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम्हें ही सजन सहले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम्हें ही शरण सहले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले गौड़ी मल्ला तीजा गुर की सेवा कर पिरा जी और नाम ते आए मनो दूर न जाए पिरा जी ओ कर बैठे हर पाए कर बैठे हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुभाए गुर की सेवा करी सुखाली जिनू आप कराए नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए नान सच ना वड्याई पूर्व लिखिया पाए हर का नाम मिठा पेरा जियो जां चाख चेत लाए रसना हर रस चाख मुए जियो आन रसाद गवाए सदा रस पाए जां हर पाए रसना शब सवाए नाम त्याए सदा सो पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजे नामे बिनसे नामे सच संभाए नानक नाम गुरमती पाई आपे ले लवाए ए वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदे सदाए दूजे कने सुख न पाया पिरा जियो बिख्या लोभ लबाए बिख्या लोभ लुभाए भरम पलाए ओ क्यों कर सो पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही
ਖਿਨ ਖਿਨ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਚੁੱਕੈ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਦ ਗਵਾਰ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਏ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਪਰਮ ਅੰਧ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੋਹ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲੈ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਜੋ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਗਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਜਾਏ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਜਨਮ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਬਿਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ, ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੈ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਕਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾਤੈ, ਪੁਰਖੋ ਬਦਾਤਾ ਏਕ ਸ੍ਰੀ ਤਰ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਤੁਝੇ ਉਡੀਣੀਆ, ਕਰ ਸੇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸੇਵ ਸੀ ਚਰਣੀ, ਕਰ ਸ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸੀਸ ਚਰਣੀ, ਮਨ ਆਸ ਦਰਸ ਨਿਮਾਣੀਆ, ਸਾ ਸਾ ਨਾ ਕੜੀ ਵਿਸਰੈ, ਬਲ ਮੂਰਤ ਦਿਨ ਰਾਤੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਿਆਸੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੈ, ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਜੀਉ ਸੜਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹ ਲੀਆ ਜੀਉ, ਦੇਖ ਚਲ ਤੁਮਾਰੇ, ਚਲਦਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਦਾ, ਤਨ ਕਿਉਂ ਧੀਰੈ, ਗੁਣਤ ਨਾਮ ਦਿਆ ਬਾਲਾ, ਸਰਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਸ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਉਹ ਵਿਛੜੋ ਬੜਿਆਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨ ਦੇਹਾ ਤਾਰੋ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ, ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤੇ ਸਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ, ਅਰਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਤਾਨ ਗੁਰ ਪੈ, ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਨ ਮੈਂ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਰਲੀਆਂ ਕਰੇ ਕਾਮਣ ਮਿਲੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਸਾ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਰਲੀਆਂ ਕਰੇ ਕਾਮਣ ਮਿਟੇ ਸਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਜਿਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬਜਾਈ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਠਾਕਰ ਸਖੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਸਭ ਮੀਸ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਉਪਜਾ ਦੋ ਥਾਓ ਗਵਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਵਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਧ ਸੁਖਦਾਈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਨ ਦੁਆਰ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲਾ ਧਰਮਸਾਲਾ ਪਾਰ ਦਿਆ ਠਾਕਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ, ਜੈ ਸਾਹ ਸੰਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਝ ਧਿਆਵੇ, ਕਰ ਦਿਆ ਮਿਆ ਦਿਆਲ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਰਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਸ ਪਿਆਸੇ ਮਿਲ ਦਰਸਨ ਸੋ ਸਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਅਵਰ ਜਾ ਸਬਰਾਲੀ, ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਏਕ ਅਲੇਖ ਠਾਕਰ ਜਿਨ ਸਭ ਕਲ ਤਾਰੀਆ, ਤੁਜ ਭਜਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਸ ਕੀਆ, ਆਦਪੁਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਚਲਿਆ ਆਪ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਭ ਕਲ ਤਾਰੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀਆ, ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੇ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ, ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋ ਜਵੇ ਨਦਾਨਾ, ਜਮਕਾਲ ਤਿੰਨ ਗੋ ਲਗੇ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੇ, ਮਨ ਭਜ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਅਰਾਧੇ ਸਿਸ ਬੇਫਲ ਪਾਵੇ, ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸੇ ਦੇਹ ਦਰਸੁ ਗਿਆਨਾ, ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਨਿਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ, ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲ ਫਲਿਆ ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ, ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਘਟਾਮ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬ ਰਾਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇ ਰਾਖੇ ਜਿਤ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਲਗੇ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ,
ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇ ਰਾਖੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕਾ। ਅਸਪਤ ਅਸੰਕ ਪਨੀਤ ਕਰ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਵ ਕੋ ਤਿਨ ਕਿਰ ਵਿਹਦਾਨ ਹਾਰ। ਸ਼ੰਤ ਜਾ ਮਨਾ ਤੋ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਮਾਧੋ, ਤਿਆਇ ਮਨਾ ਮੁਰਾਰ ਮਕੰਦੇ ਕਟੀਏ ਕਾਲ ਦੁਖ ਪਾਦੋ, ਦੁਖ ਹਰਨ ਦੀਨ ਸਰਨ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਚੰਨ ਕਮਲ ਰਾਧੀ ਆਏ, ਜਮ ਪੰਥ ਬਿਗੜਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੀ ਆਏ, ਕਲ ਮਲੇ ਦੈਤਾ ਸੁਧ ਕਰਤਾ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਅਰਾਧੋ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਦਮੋਦਰ ਦੁਖ ਹਰ ਪੈ ਭੰਜਣ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਦਿਆਲ ਮਨੋਹਰ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਬਿਰਧਾਇਆ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਪੂਰਨ ਮਨ ਚ ਦਿਆ ਪਾਈਐ, ਤਮ ਆਂਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਈਐ, ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰ ਮੁਨ ਜਨ ਗੁਣ ਅਨਕ ਭਗਤੀ ਤਾਰਾਇਆ ਗਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਾ ਸੁਰ ਸਿਧ ਗੁਣ ਗੰਧਰ ਮੁਨ ਜਨ ਗੁਣ ਅਨਕ ਭਗਤੀ ਗਾਇਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਚੇਤ ਮਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕਲਾ ਜਨਤਾਰੀ, ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਕਰ ਪਾਣ ਉਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ ਪਾਰੋ, ਸੜਨ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਮੋਨ ਸਰਬ ਦੋਖ ਵਿਦਾਰੋ, ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਭ ਦੋ ਬਿਨਸੈ ਜਪਤ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਕਲ ਥਾਰੀ। ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਚੋਤਵ ਨਾਸੀ ਸਭ ਤੇ ਉਦਿਆਲਾ, ਬੇਸੰਬਰ ਦੇ ਮਨ ਕੋ ਏਕੇ ਸਰਬ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਹਾਂਦਿਆਲ ਦਾ ਨੰਦ ਆ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਲੋ ਮੋ ਨਾਸੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਸੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਵਾ ਸਭ ਸੇਵਾ ਪਈ ਪੂਰਨ ਕਾਲਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕੇ ਛਪੁਨੇ ਜਬ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰਿਹਾ, ਮਨਾਏ ਲੇ ਹਰ ਕੰਤੇ ਮਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਪਠੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮੰਤ ਹੈ ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪੈ ਨਰਗ ਨਵਾਰੇ ਪਨੀਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜੰਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਖੀਐ ਇਹ ਭਲੀ ਬਨੰਤੀ, ਇਹ ਮਤਾਂਤ ਪਕਾਈਐ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਪਾਧ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਈਐ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਪਰਮ ਨਾਸੈ, ਮੰਜ ਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ। ਸਖੀ ਇਸ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਬਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ, ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਸ ਬਿਰਾਗਣ ਭੇਖੋ ਦਾਨ ਸੁਹਾਏ, ਖੋਜ ਲਹੁ ਹਰ ਸੰਜਨਾ ਸੰਗ ਸਮਰਤ ਪੁਰਖ ਬਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਜਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਮਾਏ। ਸਖੀ ਨਾਲ ਵਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਸ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮ ਖੋਇਓ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਕੌਲ ਖਿਲਿਆ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨ ਟਲਿਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੌੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾ ਗਿਆਨ ਭਜਣ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦ ਸਹੋਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਤਾਰ ਨਾਮ ਵਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜਬ ਮਨ ਰੋਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥਮ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੰਜਣ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਵਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤਰ ਜਪ ਉਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਲ ਲਗ ਧਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਕਰ ਨਮਸਕਰਾ ਸਲੋ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ, ਨਾਨਕੇ ਕੋਰਾ ਵਰਿਆ ਦੂਸਰੋ ਆ ਨਾ ਹੋਗ ਪੌੜੀ, ਓਅੰ ਸਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਆਪੇ ਸੁਖ ਰਾਸਨ ਆਪੇ ਸੁਣਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਸਨ, ਆਪਨੇ ਆਪ ਆਪ ਪਾਇਓ ਆਪੇ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਓ, ਆਪੇ ਸੁਮਾ ਆਪ ਸਥੂਲਾ ਲਗੇ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਹੋਏ ਰਵਾਲਾ ਰਹਾਓ ਸਲੋਕ,
निरंकार अकार्याप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान है नानक एक अनेक पौड़ी ओम गुरमुखी वकारा एक सूत पर ओम नहारा पेन पुन पेन पेन ते त्रैगुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण दिस्तार सगल पांत कर करे अपायो जन्म मरण मन मो बडायो दुहु पाते आप निरारा नानक अंत न पारा बारा सलो से सा भगवंत सह सा संपे हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कह पास पौड़ी पवड़ी ससा सात सात सत सो सत गुरु पते पैन हो सो सन परे जे पाए सिमर सिम गुण गाय सुनाए संसय परम नहीं किस गया व्यावत पर प्रताप ताहूं को जावत सो साधु है पहुंचन हारा नानक ताके सद बलहारा तान तान कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहुने नानक होत जात सब तूर पौड़ी तदा तूर तन पनीत तेरे जनुआ तान ते जे रुच ए मनुआ ताने बासे सुन आछे आत प्रय प्रीत साध राज आछे तंदे कहां ब्या बताऊं जो एक शाड़ अनकते न जाऊं जा के ही है दियो प्राव नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलो अनक पेख और ज्ञान त्यान मन हठ मिलो न कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जोत शात्र गर फातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुनत कश जोग ना हो ज्ञानी रहता गया दृढ़ जाके हुसन शीसम सब ताके ज्ञानी तत गुरम बेचारी जाको कृपा जाको नानक जाको कृपा तारी श्लोक आमने आए शिष्ट में बिन बुझे पछटोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी जहां जुग में एक को आया जन्मद मोयो मोनी माया गर्भ कुंड में उर्तव करते सा सा सिमर प्रव रहते उर्ज परे जो छोड़ शडाना देवन हार मने बसराना तारो कृपा जिसे गुसाई यति उत नान तिस बिसर नाई सलो आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन न कोय आवन जाना ते मिटै नानक जे मन सोहे पौड़ी एओ जी बौद्ध गर्भवासे मोन मगर मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे कर दीने ए साजन कश कहो अपाया चाहते तरो बिखम ए माया कर कृपा सात संग मलाए नान ताके निर्नमाय श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रवे आप पछ आपन हो कर है नानक बिन हर कहां कमाद पौड़ी एक आप करावन हारा आपे पाप पुन बिस्तारा यहाँ जोग जे जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दवायो उहां का अंत न जाने को जो जो करे सोई सो फन हो एक ते सगल बिस्तार एक ते सगला बिस्तारा नानक आप सवार नहारा सलो राज रहे बिनता बिनोद कुसम रंग बिख सोच नानक ते सरणी परो बिंस जाए मैं मोर राज रहे बिनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक ते सरणी परो बिंस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचो तै तै बंधन पाए जे बेदत कतू न छूटी है सागत ते कमाए हो करते कर्म रात थाके पार अपार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तो यो कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग प्रंक मोहन ना बुझाए
सोभरा सद हुसंग लेखे गंत न छुटी है काची पीत न शुद जिसे बजाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध सलो टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग जोता जोरा ते रम ए रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो ए मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर सुभ देव ऊआ मैली पावे तो बासा जन्म न होए बनासा मस्त कर्म लिखियो तुर जा कह हर संपे नान करता कह सलो लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंद लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लिपट बिखे रस राते ओम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मे मरना ज्यो ज्यो हुम त्यो त्यो करना को ऊना को पूरा को सुवरना को मूरा जे जे लावो ते ते लगना नानक ठाकर सदा अलेपना स्लोक लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गैर गंभीर अथा दूसर नाही अवर को नानक वे परवा पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो होवन हार सद होवन हार सद आया होवन हार होत सद आया हुआ कांत न काहू पाया कीट हस्त में पूरे समान है प्रगट पुरख सब ठाओ जाने जाको दिनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलो आत्म रस जे जाने हर रंग सहजे मान नानक धन धन धन जन आए ते प्रवान पौड़ी नानक धन धन धन जन आए ते प्रवान पौड़ी आया सवलताओं को गणी है जास रसन हर हर जस पड़ी है आए बस साधु के संग है अंधे नाम ते आवो रंग है आवत सो जन नामे राता जाको देहा में आबे दाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्स समाया सलो जास जपत बन हो आनंद बिनसे दूजा पाओ दो दिना बुझा नानक नाम समाओ पौड़ी जया यारो दुर्मा दो तेसे त्या अवर सुख रो जया जाय परो संसर ना जे आसर या पौ जल तरना जया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो जया जन्म न हारी है गुरपुरे की टेक नान ते सो पाया जाके हीरे एक सलो अंतर मन तन बस रहे ईत ऊत के मीत गुरपुरे अपदेसिया नानक जपिए नीत पौड़ी अंदन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिख्या दिन चार से छाड़ चलिया सब कोय काको मात पिता सुत तिया ग्रह बंता किस संग न लिया ऐसी संसो बिनसत नाही पत से ती अपने कर जाई साध संकल कीर्तन गाया नानक ते बोर न आया सलो आत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तरवंत मृत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खड़ छात्रोग ज्ञाता पूरक कुंभक चेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ अशनानी सोम अपरस उदयानी राम नाम संग मन हेता जो किस की नो सो अनेता ऊहा ते उदम गर चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला सलो कुंट चार दै दिस प्रमय करत किरम की रेख सुख दुख मुक्त जो नानक लिखियो लेख पौड़ी कक्का कारण करता सो लिखिया ले न मेटत को नहीं होत कुछ दो बारा करने हारना भूलन हारा काहू बंद खारे आपे
काहू ध्यान परम प्रताप है। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दिनो सो नानक लीनो। सलो खात खर्च बिलशित रहे, टूर न जाए पंडार, हर हर जपता नेक जान, नानक नाए संभार। पौड़ी खखा खोना कुछ नहीं, ते समझ के पाए, जो देना सो दे रहे हो, पावे तह तह जाए। खर्च के जाना नाम तन, या भगतन की रास, खिमा गरीबी अनंत सहज, जब तर है गुण तास। खेले बिकसे अनंत से, जाको होत कृपाल, सदीव गनीम सहावने, राम नाम गृह माल। खेद न दुख न डान ते, जाको नदर करी, नानक जो प्रपाणे हां, पूरी तेन परी। पुसलो गर मन देखो मने माए, सर्प चरणो लोग, आस अनंत गुरु मिटै, नानक नाम रूप पौड़ी। गगा गोबिंद गुण रवो, सा सा जप नीत, कहां बिसा सा देखा, बिलम न करियो मीत। नै बारक नै जोबन, नै बिरदी किस बंद, ओ बेरा न बुझिए, जो आए परे जम बंद। ज्ञानी त्यानी चतर पेग, कर नहीं एठाय, साड़ सा सली गई, मुड़ता लपठाए। गौर प्रसाद सिमर रह, जा कुमतक पाग, नानक आए सफल ते, जाको प्रिय सुहाग। सलो कोखे सात्र बेद सम, आन कथु कोए, आज गादी हुन होवत, नानक एक सोए। पौड़ी कग्गा कालो बने, बिन हर दूसर नाए, नै हो नै हो ना, जत को ही संभाए। कूले तो मन जाओ आवे चरना, नाम तत काल मैं पुनो चरना, काल कालन पैतावे, बिन हर पग कहाँ थित पावे। कोल महारस अमृते पिया, नानक हर गुरजा को दिया। सलो कण काले सब दिवस साथ, नै बढ़न कड़ तिल सार, जीवन लोरे परमो, नानक ते गवार। पौड़ी गंगरा से काल ते, जो सागत प्रभु कीन, अनक जो जन्म में मरे, आत्म राम न चीन। ज्ञान त्यान ताऊ को आए, कर कृपा जैसे आप दवाए, गणती गणी नहीं को छूट, काची गागर सर पर फूट। सो जीवत जे जीवत जपया, प्रगट पै नानक न छपया। सलो चेत चेत वो चरणार बिंद, ऊंद कवल बिकसांत, प्रगट पै आपे गोबिंद, नानक संत मथांत। पौड़ी चचा चरण कमर गुर लागा, तन तन व दिन सुजोग सुभागा, चार गुण दै दिस प्रमायो, पै कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिनसु सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ, चंत बिसारी ए दृष्टिता, नानक ज्ञान अन्य जे नेत्रा। सलो छाती शीतल मन सुखी, संत गोविंद गुण गाए, ऐसी कृपा करो प्रभ, नानक दास दसाए। पौड़ी सच्चा छोरे दात मारे, दा दास के पानी हारे, शशा शारो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवानता। छाड़ सियान बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जा को संत सहाय। सलो जोर जुल्म फूले कनो, काची दे

नानक परम पौ काटी है चूके जम की जो पौड़ी तत्ता ता सो प्रीत कर गुण नित गोविंद गुण नित गोविंद राय तत्ता ता सो प्रीत कर गुण नित गोविंद राय फल पावे मन बांसते तब तुहारी ही जाए त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाऊ गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ ताहू संग न तन चलै ग्रह जो मन राज संत संग सिमर रहो ये तो आरो खाज ताता कहि न होई है जो आताव नवा रहिया पर पाले नानक में आपे माई भाव सलो थाके बहु बिद काल ते तृप्त न तृष्णा लाथ संच संच सागत मोह है नानक माया ना साथ पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बाल शाल करो माया है कोपा थैली संचो शर्म करो थाक परो गवार मन के कामना आवे अंते अवसर बार थेद पावो गोविंद पजो संते की सिकले प्रीत करो सद एक स्यों ए आसा चा सने कारण करन करामनो सब दे के हाथ जे जे लावो ते ते लगे नानक जनता नास लो दास एक निहारे आ सब कुछ देवनहार सा सा सिमर रहे नानक दस आधार पौड़ी ददा दाता एक है सब को देवनहार दें दे तोटने आवई अगनत परे भंडार देन हार सद जीवन हारा मन मोह त्यों काहे बसा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा दोष नहीं काहू को मीता माया बो बंद प्रभु गीता दर्द नवारे जाके आपे नानक दाते गुरमत आपे सलो तार जिया रे एक टेक तू लाहे बनानी आस नानक नाम त्याई कारज आवे रास पौड़ी तदा तावत हो मिटे संत संगो है बाद तोरते कृपा करो आप तो हो मने परगा तान साचा ते उसा सहा हरा पूंजी नाम बसा तीर जेदा सोभा ते बनया हर हर नाम सुन ते सुनया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली बढ़ाई स्लो नानक नाम नाम जप जपया नानक नाम नाम जप जपया अंतर बार रंग गुरपुरे अवदेसिया नरक नाए साथ संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मानता नाम बसाई नाम दान गुरमु जो जप दे बेख माया मैं ना हो खबते नन्ना कार न हो ताता को नाम मंत्र गुर दीने जा को निद दान हरे अमृत पूरे तै बाजे नानक अनहद तूरे सलो पात्रा की गुर पार ब्रह्म तज पर पंज मोह बेकार नानक सो अराधी अंत न पारा भार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपे मिल साधु पार पंज त्रो मोह मिट नाई जा कोरा कोराप गसाई पातशाह सतर शिर सो नानक दूसर अवर ना को सलो फाहे काटे मिटे गवन फते पई मन जीत नानक गुर ते थे तपाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फफा फे फिर तू आया दुर्लभ दे कल युग में पाया फिरया अवसर चरे न हाता फिरया अवसर चरे न हाता नाम जब तो कटिए पासा फिर फिर आमन जान न हुई एक एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभ करने हारे मेलो नानक बेचारे स्लो बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपै बो पोगरा नाम सादर वाल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा ब्रह्मा बहनो ते गुरमो सुज धर्मा बीरा अपना बुरा मिटावे ताहू बुरा नहीं आवे बाद्यो आपन हो बंदा
दोष देत आगे को अंधा, बात चीत सब रही सियानप, जिसे जनाब सो जाने नानक श्लोक। पह पंजने अग दूसना मने अराध हरे, संत संग जे रिद बस्यो नान ते ना परमे फौड़ी। पब्बा परम पटावो अपना, पब्बा परम पटावो अपना, क्या संसार सगल है सुपना। परमे सुनर देवी देवा, परमे सिद्ध भात ब्रह्मेवा, परम परमा नो डकाए, दोत्र महा बिख मह माए, गुरमह परम पैमह मटाया, नानक ते परम सो पाया सलो। माया डोले बहु विधि, मन लपट्यो ते संग, मांगन ते जो तुम रखो, सो नानक नाम है रंग पौड़ी। मम्मा मांगन हारे आना, देन हार दे रहे सजाना, जो दिन सोए कै बार, मन मोर कै करे पकार। जियो मांग जो मांगे, तो मांगे बिया, जाते को नकाऊ थिया, मांगन मांगते के मांग, नानक जाते परे पराव सलो। मत पूरी प्रदान ते गुर पूरे मन मंत, जे जान्यो प्रवे अपना, नानक ते भगवंत पौड़ी। मम्मा जाहू मर्म पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सो आके समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत उतारा, ताउ संग ताउ नलेपा, पूरन काड़ काड़ पुरख बसेका। उहां रस मैं उहां सो पाया, नानक लिपत नहीं ते माया सलो। जार मीत सुन सजना, बिन हर छूटण नाय, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाए फौड़ी। यया जतन करत हो बिदिया, तो एक नाम बिन कौलो सिदिया, याहू जतन कर हो दिशटारा, उआउ जतन सा संगारा, या उबरन तारे सब को, वाहे जपै बिन उबर नाहो। याहू तरन तारन समरा था, राख लियो निर्गुण नरना था, मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्रटी आई सलो। रोस न काहू संग करो, अपने आप विचार होए न माना, जग रहो नानक नदनी पार पौड़ी। रारा रेन होद सब जाकी, ताज अमान छुटे तेरी बाकी, राम दरगे तो सीजे पाई, तो जो मूल गुरमुख राम नाम ले लाए। रैत रैत रजाय रैत रैत रजाय बकारा, रहत रैत रह जाय बकारा, गुरपुरी के शब्द पारा। राते रंग नाम रस माते, नान गुर को नान कर की नी दाते सलो। लालच झूठ बिखे ब्याद, या दे मैं बास, हर हर अमृत गुरम पिया, नानक सुख निवास पौड़ी। लला लावो औख जाहू, दूध अते मिटे खनाऊ, नाम औख जे हृदय हतावे, ताए रोग सुपने नहीं आवे। हर औख सब कट है पाई, गुरपुरे बिन बेद न बनाई, गुरपुरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक, नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक। वासदेव सबत्र मैं उनक तुठाए, अंतर बार संग है नानक आदराए पौड़ी। ववा वैर न करिए काहू, काड़गा अंतर ब्रह्म संभाहू, वासदेव चल थल में रव्या, गुर प्रसाद बिरले ही गव्या। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरम जो सुनते, वैन चैन सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलो। हों हों करत बेहानिया, सागत मुक्त मुक्त जान, रड़क मुए जो त्रिखावंत, नानक किरत कमान पौड़ी। अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटे संग साधु, कर्म धर्म त नाम हरा दू, रूड़ो दे बस्यो रिद माही,
ਉਹਾਂ ਕੀ ਲਾੜ ਮਿਰਤ ਬਨਸਾਈ, ਅੜਾੜ ਕਰਤ ਸਾਗਤ ਗਵਾਰਾ, ਜੇ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖਾਰਾ, ਅੜਾੜਾ ਗੁਰਮਡਾਣ ਮਟਾਈ, ਨੇ ਮਨਾ ਸਮਝਾਈ ਸਲੋ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਉੱਟ ਗਾਓ ਉਤ ਸਿਆਨ ਤਿਆਗ, ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪੌੜੀ, ਸੱਸਾ ਸਰਨ ਪਰਿਆ ਬਹਾਰੇ ਸਾ ਸਿਮ ਬੇਦ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਾ ਸਾ ਸੰਭੂਲਣ ਹਾਰੇ ਤੁਮ ਸਮਰਾਥ ਗੰਥਾ ਪਾਰੇ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਲੋ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪੈ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਅਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਪੌੜੀ, ਖੱਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹੋ ਤਾਓ ਜੋ ਖਿਲਮੇ ਉਨੇ ਸੋਚ ਪਰਾਓ, ਖਰਾ ਨਮਾਣਾ ਹੋਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਪੇ ਪ੍ਰਾ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਪਾਵੇ ਖਸਮ ਤਾਊਆ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਪਾਰ ਬਣਾ ਐਸੋ ਅਗਨੰਤਾ, ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਰਾ, ਸਲੋ ਸਤ ਕਹੋ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਨ ਪਰੋ ਹਰ ਰਾਏ, ਉਹ ਦਸਿਆਣ ਬਸਲ ਤਿਆਗ ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ, ਸੱਸਾ ਸਿਆਣ ਵਿਛਾੜੇ ਆਨਾ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਤਿਆਨਾ, ਸੈਸ ਭਾਤ ਕਰੇ ਚਿਤਰਾਈ ਸੰਗ ਧਾਰੇ ਇਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਸੋ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ ਜੇ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਸਲੋ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮਨ ਉਠੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੇਰਾ ਵਰਿਆ ਥਾਂ ਦਨੰਤਰ ਸੋਏ ਪੌੜੀ, ਹੇ ਰੋ ਕਰ ਕਰ ਸਗਲ ਕਹਿ ਪੂਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਵਤਾਏ ਸੱਸ ਦੀ ਦੋ ਭਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਹਉ ਛੁਟਕੇ ਹੋਏ ਨੰਤੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਤੈ ਆਪ, ਹਤੇ ਦੁਖ ਜਨਮੇ ਮਰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਹਿਤ ਕਰ ਨਾਮ ਦੜੇ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪੂਰੈ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨੂੰ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੁਆ, ਸਲੋ ਲੇਖੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਲ ਪੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੋ ਦੀ ਹੈ ਤਾਏ ਨ ਜਾਣ ਥਤ, ਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ ਦੈ ਦਿਰ ਤੁਣ ਜਾਏ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮ ਨਮਨੇ ਬਸਾਏ, ਲਾਲ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋ ਇਹ ਸੰਪੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਲੰਪੜ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਸੰਭਾਏ, ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ, ਸਲੋ ਖਾਦ ਪੀਤ ਖੇਲ ਤਸ ਪਰਮੇ ਜਨ ਮਨੇ, ਪਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ, ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਨ ਸੰਭਾਏ, ਖਿਮਾ ਗਈ ਸਾ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅਮਰ ਨਾਮ, ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਗਰ ਪਈ ਅਨਸੋ ਬਿਸਰਾਮ, ਖੇਪ ਨਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ, ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰ ਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਰਾਈਐ ਜੇ ਕੜ ਕਰਿਆ ਬਿਆਪ, ਸਲੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਗਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਪੌੜੀ, ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਣ ਪ੍ਰਥਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਦਮ ਵਿਖਿਆਨਾ, ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੂਤ ਪੈ ਪਰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੋਚ ਧਰਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ, ਸਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ ਉਜਰਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ, ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀ ਆ ਮੋਹੀ ਦੇ ਦਰਸ ਨਾਨ ਬਲਹਾਰੀ ਆ, ਪੌੜੀ ਹੇ ਅਚੁੱਤ
हे पारब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दोपंजन दुर्गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे नरगुण सब टेक, हे गोविंद हे गुणदान जाके सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे है भी होमनहार, हे संत कह सदा संग निधारा आधार, हे ठाकर हो सेवको, हे ठाकर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं को, मैं गुरने नानक दी जय नाम दान, राखो ये परोए सलो, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सहा ज्ञान पंजन, गुरुदेव बंत सोधरा, गुरुदेव दाता हर नाम देसे, गुरुदेव मंत नरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थम सरोवर गुरु ज्ञान मंज परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पत पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा, गुरुदेव आद जगा जो जो, गुरुदेव मंत हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार बम परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कार। ए स्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुहणी मल्ला पंजवां स्लोक, इक ओ अहंकार सत गुर प्रसाद, आद गुर नम है, जुगाद गुर नम है, सत गुर नम है, श्री गुरुदेव नम है, अष्टपादी सिमरू सिमर सिमर सुह पावू, काल कले तन माए मटावू, सिमरो जाप समर एक है, नाम जपत अगन तन एक है, बेद प्राण सिमर सुदाकर, कीने राम नाम एकागर, किनका एक जे जीव सावे, ताकि महिमा गणी न आवे, कांखिए कह दस दहारो, नानक सम होय अधारो, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन बस राम रहाओ, प्राव कह सिमन गर्भ नाम बसै, प्राव कह सिमन दोष जम नसै, प्राव कह सिमन काल पर हरै, प्राव कह सिमन दुश्मन ठहरै, प्राव सिमरत के बिह न लागै, प्राव कह सिमन अंदर जागै, प्राव कह सिमन भव न व्यापै, प्राव कह सिमन दुख न संतापै, प्राव का सिमन साध कह संग, सर्मदान नानक हर रंग, प्राव कह सिमन रिद सिद्ध नौ निद, प्राव कह सिमन ज्ञान त्यान तत बुद्ध, प्राव कह सिमन जपता पूजा, प्राव कह सिमन बिनसे दूजा, प्राव कह सिमन तीश नानी, प्राव कह सिमन दरगह माने, प्राव कह सिमन हुए सो पला, प्राव कह सिमन सुफल फला, से सिमर जने आप सिमराए, नानक ताके लागू पाए, प्राव का सिमन सब ते ऊंचा, प्राव कह सिमन बिनसे बण पग सिमन उदरे मूचा, प्राव कह सिमन त्रिना बूजा, प्राव कह सिमन सब कह सूजा, प्राव कह सिमरन ना ही जम त्रासा, प्राव कह सिमन पूर्ण आसा, प्राव कह सिमन की मल जाए, अमृत नाम जद माए समाए, प्राव जी बसे साध की रसना, प्राव जी बसे साध की रसना, नानक जान का दास दसना, प्राव को सिमरे से तरवंत है, प्राव को सिमरे से पतवंत है, प्राव को सिमरे से जान परवान, प्राव को सिमरे से पुर प्रदान, प्राव को सिमरे से बेमोता जय, प्राव को सिमरे से सर्व के राजे, प्राव को सिमरे से सुखवासी, प्राव को सिमरे सदा बनासी, सिमर ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्राव को सिमरे से पर उपकारी, प्राव को सिमरे तेन सद बलहारी, प्राव को सिमरे मुख सुहावे, प्राव को सिमरे तेन सुबिहावे, प्राव को सिमर तेन आत्म जीता, प्राव को सिमर ते निर्मल रीता, प्राव को सिमर ते अंधक नेरे, प्राव को सिमर बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदन जाग,
नानक सिमरन पूरे पाग, प्राव कै सिमरन कार्य पूरे, प्राव कै सिमरन कबो न छोड़े, प्राव कै सिमरन हर गुण बानी, प्राव कै सिमरन सह समानी, प्राव कै सिमरन नेचले आसन, प्राव कै सिमरन कमल बिगासन, प्राव कै सिमरन चुनकार, सुख प्राव सिमरन कंत न पार, सिमरै से जिन जिन को ब्रह्मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन का पर पटाए, हर सिमला बेद हो पाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौंकुट जाते, हर सिमरन तारी तब तरना, सिमर सिम आकार न करना, हर सिमरन क्यों सब लकारा, हर सिमरन आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बजाया, नानक गुरमुख हर सिमरन ते सो पाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्दो पंजना, कड़ कड़ नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ अष्टपादी, जय मात पिता सो मीना पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सुहाई, जय मां प्या दो जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवे अतपारी, हर को नाम खिरमाए उदारी, अनेक पुनच करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप हरे, गुरमन नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सलसी को राजा दुखिया, हर का नाम जप तोय सुखिया, लाख करोड़ी बंद ना परे, हर का नाम जब निस्थर है, अनक माया रंग तिख ना बजावे, हर का नाम जब थगावे, जे मार गए जात अकेला, तैहा नाम संग हो सहेला, ऐसा नाम अंसदा ते आई है, नानक गुरम परम गत पाई है, छोड़ नाही कोड़ला भाई, नाम जब तय पार पर आई, अनक बिंग जे आए सिंगारे, हर का नाम तत्काल उदारे, अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जवत पावे बसराम, हो मैला मल कबू न तो वह, हर का नाम कोड़ पाव खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गण जाए न कोसा, हर का नाम हुआ संतोसा, जे पेंडे मां अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पन तेरा को न सजानू, हर का नाम ते नाल पछानू, जा मह प्यान तब वो काम, तै हर के नाम की तुम परेशान, जहां त्रिखा मन तुझा करखा, तै नानक हर हर अमृत बरखे, भगत जन की बरत नाम, समझना कह मन बसराम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर अरोख साध कमाद, हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नौदान, मानता रंग रते हर रंग कह, नान जन के बिरद वे कह, हर का नाम जन को मुक्त ज्योत, हर के नाम जन को तृप्त पोत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जब का परे न पंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को पोग जोग, हर नाम जब का नाम ब्यो, जन रातार नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर जन के ओट सतानी, हर प्रता जन अवरन जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ बैर जन हर जपे, हर का भगत पढ़ने छपे, हर की भगत मुदबो करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण काम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत रिद वस, संत प्रताप दुर्त सब नस, संत का संवड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है,
नाम तुल कुछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जी, अमृत वेले तो सजी दीवाना दियां हाजरियां भरियां ने। नितनेम अनुसार जो सहज पाठ रब ने बाणी दे पाठ श्रवण कीते ने, गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां कला बख्शन। सवा हुण समां है आसकी वार दे कीर्तन दा। भाई साहिब भाई परमिंदर सिंह दा जथा श्रवण कराउणगे आसकी वार दे कीर्तन। बड़े प्यार नाल श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गावन गोपी गावन कान गावन सीता राजे राम निरपन रंकार सच नाम जाका किए सोल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलो चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत आनंद लाटू मधानिया नगा।

तीर्थ नाम अर्चा पूजा अग्रवाद बहकार। जोगी सुन त्यावण जेते अलख नाम करता, सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार। सतिया मन संतोख उपजे दिने के विचार।

0: लखत प्रतीर्था सह जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लख ज्ञान तन पढ़िए पार पुराण जिन करते करना किया लिखा है आपने जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी
1: सच्चा सब एक तुन सचो सच बरताया जिस तू दे तिस

जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेताय। सत जुगरा संतोका त्रम अग्रथवा तरह तेरा जते का जोर ग्रथवा द्वापर रात पैका सत अग्रथवा हो कल

सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे ऋग कहे रेखा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय प्रशत जाए नानक तो मुकुंद पागे जिजमें जोर श्री चंद्रावल का।

0: कन्नी सुत कन पहलाए तबारी खागे। नानक हंस आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला।
1: सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जम्मड़।

नानक जन की राह जित मिले चुके सब सोग संतापी धन धन गुरु नानक जन की राह।

0: संदर्शना
1: रब को सिमरे से तनवंते
0: रब को सिमरे से पकवंते
1: रब को सिमरे से जान परवान
0: रब को सिमरे से पुरख प्रदान
1: रब को सिमरे से बेह मोहताजे
0: रब को सिमरे से शर्म के राजे
1: रब को सिमरे से सुखवासी
0: रब को सिमरे सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन्हें आप दयाला
0: नानक जन की मंगेर वाला
1: रब को सिमरे से पर उपकारी
0: रब को सिमरे से सद बलहारी
1: रब को सिमरे से मुख सुहावे
0: रब को सिमरे

0: वरख
1: भक्त जना की बर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत संत दिन रात
0: हर हर औकर साधु कुमार
1: हर जन के हर नाम निदान
0: हर ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंगे के
0: नानक जन के व्यर्थ भवे के
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
0: हर के नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर

0: आठ पैर जन हर हर जपे,
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपे,
0: हर की भगत मुक्त भो करे,
1: नानक जन संकेते तरे,
0: पार जाते हर को नाम,
1: नाम तेन हर हर गुण गाम,
0: सब ते उत्तम हर की कथा,
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा,
0: नाम की महिमा संत्र दवसे,
1: संत प्रताप दूर सब नसे,
0: संत का संगवड़ पा

0: सगल परख में परख प्रधान आपस को जो जाने नीचा
1: गनिये सबते ऊंचा
0: जाका मन हो सगल किरीना मन अपने ते बुरा मिटाना सुख दुख जन समृष्टेता
1: पाप नहीं
0: नर्तन को तन तेरो नाओ
1: तेरा
0: मन को प्रभु तेरो मान
1: सगल कटा को देवो दान
0: कर्ण करावन हार स्वामी
1: सगल कटा के अंतर जामी
0: अपनी गत मित जानो आप
1: अपन संगे आप प्रभु राते
0: तुमरी उस्तर तुम ते होए
1: सर्व
0: धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग धर्म मल
0: सगल उद्यम में उद्यम भला
1: नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: रसन

0: छोड़ छोड़ संग बचे
1: जो शरण ना सो अस्थिर कर माने
0: जो हो वंशो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे
0: संग सहाय तिस पर हरे
1: चंदन लेप तारे तो ए
0: प्रीत बसम संग होए
1: अंध कूप में पतत बेकराल
0: काढ़ लियो प्रभ दयाल
1: तूत पशु की मांस जात
0: लोग पचारा करे दिन रात
1: बाहर पेखन तरमल माया
0: सब सुनाही कष्ट करे छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापे लोग सुवान
1: अंतर अगन बार तन स्वार
0: पाथर कैसे तरे था
1: जाके अंतर बसे प्रव्याप
0: के जन से समात
1: सुनंदा कैसे मार्ग पावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा
0: निस गई है तो समझे पूरा
1: कहाँ बिसन पद गावे गोंग
0: जतन करे तो पीसुर पंग
1: कह पिंगल पर्वत पर पवन
0: नहीं हो तुम उस गवन
1: करतार कर्ण में दीन बेंती करे
0: नानक तुम्हारी कृपा तरे
1: संग सहाय सो आवे नचीत
0: जो बराई ता सो प्रीत
1: बलवा के ग्रह

0: पछतावै।
1: जो दिसे सो चालनहार,
0: लटरे होतै अंधधार।
1: बटाउ से जो लावे ने,
0: राखो हाथ न आवे के।
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई,
0: कृपा नानक आप ले लाई।
1: मिथ्या तन तन कटंब सुभाया,
0: मिथ्या

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, धन धन तेजन जय कट बस्यो हर नाओ, रहता वर कछ अवर कमावत, जानन हार प्रभु परवीन, आवत जावत जन्मे मरे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार।

0: पर सास सब की गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपाते होए परगास
1: प्रभु दया ते कमल बिगास
0: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मन दुख होए।

0: साध के संग मुख उज्जल होत,
1: साध सगली खोत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संसार होत नवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन परानी,
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा सुमानी,
0: साध के संग गोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर खुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग मर्त रस
0: साध संग होय सबकी रीन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कतहु तावे,
1: साध संग स्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते भिन्न,
1: साध
0: संग दुश्मन सब मीत,
1: साधु के संग महापनीत,
0: साध संग के सो नहीं बैर,
1: साध के संग न भीगा पैर,
0: साध के संग नाही को मंदा, साध के संग नाही हो ताप, आपे जाने साध बढ़ाई,
1: साध प्रभु बने आई,
0: साध के संग न कब हूं तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बसता गोचर ले,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान उच्चे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ है सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: साधु के कुर्बान,
0: साध के संग सब कुल उधारे,
1: साधु
0: के संग सोतन पावे,
1: पेशा को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: साध के संग सफल जनम,
0: साध के संग नहीं कश काल,
1: दर्शन पेट न होत निहाल,
0: साध के संग कलुख तहरे,
1: साध के संग नर पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सुहेला,
1: साध संग विशुद्ध हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न व्यर्थ जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: साध
0: के संग सुनो हर नाव,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट कट बीठा,
0: साध संग पै आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
1: साध की शोभा मूच ते

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्व को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान।

0: ब्रह्म ज्ञानी के नाहि अभिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा,
0: मन अपने है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे,
0: प्रभु आप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी छीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा मन
1: बसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए,
1: ब्रह्म ज्ञानी के सकल मानवाए,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अथाखर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव निवर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार।

0: पेके नेत्र
1: संत संगेत
0: कर्ण सुने कहू की निंदा
1: सबते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद भिख्या पर हरे
1: मन की वासना मनते टरे
0: इंद्री चिंत पाई दोखते रहत
1: मन कोड मदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: की माया ते होए भिन्न
0: कर्म कर तो होवे न कर्म
1: वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काउ फल की इच्छा नहीं बाचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल आर दिड़ी अवरा नाम जपावे
1: वैष्णो परम गत पावे
0: गौती भगवंत भगत का रंग
1: ते आगे दुष्ट का संग
0: मन ते बिन से सगला परम
1: पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: भगवती कीमत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत हर के चरण हृदय बसावे
1: कैसा भगवती भगवान

0: धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिस नदरी आया सदा निकट निकट हर जान अपने दास को अब कृपा करे
1: इस दास को सब सो जी परे
0: सगल संग्यात में उदास प्रभु की आज्ञा आत्मीता वह
1: मुक्त सो कहा
0: तैसा।

0: विसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यानता रे
0: कई कोट कब का विचार
1: कई कोट नवता नाम ते आवे
0: पावे
1: कई कोट पे अभिमानी
0: कई कोट अंध ज्ञानी
1: कई कोट किरपन कठोर
0: कई कोट अभिघातम निकोर
1: कई कोट परदेश परमाए
0: कई कोट पर धर्म को हिरे
2: कई कोट पर दुख ना कर
1: कई कोट माया शरमाहे
0: कई कोट पर देश परमाहे
1: जित जित लावो तित तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट से जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर प्यो पाए
0: कई कोट पातर व्यर्थ निभ जाए
1: कई कोट पवन पानी बेसंतर
0: कई कोट देश कुमंडल
1: कई कोट सत्यर सूर नखत्तर
0: कई कोट देव दानविंदर सिर शतर
1: सगल समगरी अपने सुतारे
0: नानक जिस जिस पावे तिस तन सतारे
1: कई कोट राज ताम साधक
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र
1: कई कोट कीर्तन समान

0: सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब कुछ ले,
0: जो तिस पावे सोई करे,
1: अनजानत बिखिया मैं रचे,
0: जे जानता अपने आप बचे,
1: पर मैं भूला दे दिसता आवे,
0: कमाए चार कुंट भरे आवे,
1: कर कृपा जिस अपनी भगत दे,
0: नानक तेजा नाम मेरे,
1: खिन मैं नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब निवाज,
1: जा का दिष्ट कछु न आवे, जाको अपने करे बख्शीस,
0: लेखन करे जगदीश,
1: जियो पिंड सा तिसकी रास,
0: पूर्ण ब्रह्म प्रकाश,
1: अपनी बनते आप बनाई,
0: नानक जीवे देख बढ़ाई,
1: इसका बाल नाई इस हाथ,
0: करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो, कबू ऊंच नीच मैं बसे,
0: कबू सोग हर करंग हसे,
1: कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बेता ब्रह्म विचार,
0: ज्ञान के आप मिला बनहार,

0: हरि नीच का साजा,
1: कब हुआ अपकीरत में आवे,
0: कहु भला भला कहावे,
1: जो प्रभु राखे ते भी रहे,
0: फरसाना सच कहे,
1: कबू ए पंडित करे बखियान,
0: कबू मोह तारी लावे ध्यान,
1: कबू तट तीर्थ स्नान,
0: कबू सत साधक मो ज्ञान,
1: कबू कीट हस्त पतंग जिया,
0: अनक जोन पर मैं परमिया,
1: नन्ना जुबियों स्वागी दिखावे,
0: जो प्रभु पावे तिवे नचावे,
1: जो तिस पावे सोई होए,
0: नानक दूजा वर न कोए,
1: कबू साध संग त्यो

0: अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान
1: हो वत्सवान
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: हो वत्विष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे
1: परमावे
0: धन पुम का जो करे गुमान
1: मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: मुक्ता के सुख पावे
0: धनवंता होए कर गर्भावे
1: समान का संग न जावे
0: बोलस कर मानक ऊपर करे आस
1: ताका होए विनाश
0: सरते आप जाने बलवंत
1: होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद का मिटे अभिमान
1: नानक कर गए परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: शरम पावे सगले थारे
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: स्वर्ग फिर फिर अवतार
0: अनेक जतन करा तमनी दरवे
1: दरगे को कैसे गवे
0: आपस को जो पला कहावे
1: भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेंजा का मन होए
1: नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मोहिते कुछ होए
1: इसको सुख नाही कोए
0: जब भी जाने मैं किस करता
1: अगला गर्भ जोन मैं फिरता
0: जब तारी को बैरी मीत
1: जब लग नाही चीत
0: जब लग मोह सगन मंग जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहज कटेला को उठता वे
1: माया पाछे पावे
0: अनेक भोग भी क्या कह करे
1: तावे खब का मरे
0: बिना संतोख नहीं को राज्य नाम रंग सर्व सुख होए
1: किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करा मन आपे आप
1: कर जाप
0: कर्ण करावन कर

0: उसते पिन कहो किछ होए
1: अंतरे कैसोए
0: अपने चले त्याग करने हार
1: करे रंगिया पार
0: मन में अमन अपने माहे
1: कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: प्रसाद किने बखियानी
0: सच सच सच सच

0: निंदक परमेश्वर मारा।
1: संत का निंदक रायते हीन,
0: निंदक दुखियार दीन,
1: संत के निंदको सर्व रोग,
0: संत के निंदको सब जोग,
1: संत के निंदा दुख में दुख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होई मोह,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का

0: संत का दुखियत बीत टूटे,
1: संत का दुखी कितने काज ना पहुँचे,
0: संत के दुख ध्यान परमाई है,
1: संत का दुखी उज्जड़ पाई है,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: सास बिना मृत की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किसना है,
1: अपन बीजा पे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: संत पावे थल वार,
0: संत का दुखी ओ बिल्लाए,
1: जाल भी ओन मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राज,
1: जो पाव की गन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो बाटल खेत माए दोहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सत में त्या कहत,
0: कीर्त निंद का तो रही पया,
1: नानक ज्योत सिस पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाई है,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है,
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
1: संत का दुखी उठ निराशा,
0: संत के दुख न तिस्ते कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पिया कितना मेटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिस क्यों करने हार,
1: सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभु की उस्तत करो दिन रात,
1: सिद्ध आवो सास ग्रास,
0: सब कुछ वरते

0: निरंजन जाने
1: गुर प्रसादा अपने अब सूझे
0: जिसकी जानो तृष्णा पूजे
1: सा संग हर हर जस कहत
0: सर्व रूप हर जस कहत
1: अंतिम कीर्तन केवल बख्यान।

0: किस ते डरे,
1: जैसा सा तैसा दृष्टाया,
0: कार्य में आप समाया,
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया,
0: सात सा बुझिया,
1: जब देखो तब सब कुछ मूल,
0: सो सुखम सो स्थूल,
1: न किस जन्मे न किस मरे,
0: चलते आप ही करे,
1: आमन जामन दृष्ट अदृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अविनाशी नाही

0: पशुपति चरण सासर प्रसन्हार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सासर पेखनहार
1: नाम सत सत ध्यानहार
0: आप सत सासब धारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: भोजन हर को सासब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप जन मान्या
1: कर्ण काम तन मूल पछान्या
0: जग विश्वास प्रभ आया
1: अंत समान प्रगटाया
0: निरपोए बसाना
1: जिस्ते उपजाते समान।

0: सेवक जिया प्रवता रे
1: नानक सो सेवक सा सा समारे
0: अपने जन का पर्दा टाके
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आप पत रखे
1: ताकि घर में कोई ना लाखे
0: प्रभु के सेवक को कौन न पहुँचे
1: प्रभु के सेवक को ऊँचे ऊँचे
0: जो पर अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दया जिस पर बिठाया
0: नीकी कीरी मैं कल रखे
1: भस्म करे लश्कर को रखे
0: इसका सास न काटते आप
1: तो राख दे कर हाथ
0: वहाँ जतन कट वो पात
1: इसके करता मिलते जात
0: मारे राखे अवर न कोई
1: सर्व जिया का राखा सोए
0: पाए सोच करे रे प्राणी
1: जब नानक प्रभु अलख बढ़ाणी
0: बारम्बार बार प्रभु जपिए
1: अमृत मन तंत्र पिए
0: नाम तंजन गुरमुख पाया।

0: को चार कुंठ उठता है जिसो को नित बाछे मीत
1: साधु संग प्रीत
0: जिसो बा को करे पली करनी
1: सासु बा बजार की सरनी
0: अन को पावी रोग।

जपे सो पुनीत हम निर्गुणिया नीच जान सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए अनिक राजभोग वढ़ियाई भोजन का प्रसंग

0: जाबे के अरग में अपार
1: राख स्वर्ग को अवतार
0: जब निर्गुण प्रसाद सुभाए
1: सब सत का उठाए
0: जाबे आपे आप अपनी जो तरे
1: अमन डार कमन

0: सर्व कला आपे परवीन,
1: वेद देव कहां को चीन,
0: जय अपने आप आप उतारे,
1: सगन अब सगना बिचारे,
0: जय अपन ऊंचा अपने आप नेरा,
1: कौन ठाकुर कौन ये चेरा,
0: विषम विषम रे विषमाद,
1: अपनी का जानो आप,
0: जय छल छेद भेद समाया,
1: उमा के सब व्याप्त माया,
0: आपस को आपे आदेश,
1: गुण का नाही प्रवेश,
0: जय के एक एक भगवंता,
1: कौन जिने लगे चिंता,
0: जय अपने आप आप पतियारा,
1: कौन कहे कौन सुनने।

0: ज्ञानी प्रभु की सबको भूले सर्व कला कर खेल खेला सर्व ज्योत में जाकी ज्योता
1: स्वामी
0: घर पर सार परम का नाश संजना मिल संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना सुनो सब वचन जिन जाता तिसकिए रहत
1: वचन साधु सब कहत
0: जो जो ए सोई सुख माने अंतर बसे बार पियो ही
1: नानक दर्शन दे सम होई
0: आप सत गया सब सत
1: सगले उत्पात
0: इस भावे त करे विस्तार
1: इस भावे त एकंकार
0: अनि कला लखी न जाए
1: इस भावे तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: आप भरपूर
0: अंतर्गत जिसे आप जन्नाए
1: आप जाए।

0: पशुपति पूरे गुरकासुर प्रदेश
1: पार ब्राह्मण एकट कर पेख
0: सा सा सिमरो गोविंद
1: अंतर की उतरे चंद
0: आस नित्य गोत्रंग
1: संत जना की दूर मन मांग
0: आप छोड़ बेंती करो
1: सा संग गगन सागर तरो
0: हर तन के पर लेओ पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आनंद।

दान विषादान परुषादान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगर टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मादा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे माण नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट सचे पिता अकाल पुरख